0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन

आई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा ए 2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

के प्रोग्राम हेलो फरमाइश सिलसिला रहेगा जी टेलीफोन मिलाओ जी। 2 बजे अंग्रेजी विच खबरां रीले करांगे ते 2:15 ते हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन तुसी सुनोगे। 2:30 ते पेश करांगे प्रोग्राम सुरीली दोपहर। 3 बजे तो लैके शाम दे 5 बजे तक विविध भारती बंबई दे प्रसारण रीले करांगे। शामी 5 बजे तुसीं सुनोगे प्रोग्राम किसान वाणी। 5:30 बजे का समा रहेगा प्रोग्राम गल्लां चों गल्ल दा, जिस दे तहत सुनोगे विशेष प्रोग्राम हर अकाल उस्ताद दे तहत एक विशेष सिलसिला अरदास दर्शन रूप अभ्यास। वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा, संपादन गुरदीप गिल दा। 6:20 ते प्रदेशी खबरां रिले करांगे आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। 6:30 बजे युवा साथियों लिए प्रोग्राम तुसी सुनोगे युवाणी, जिस दे तहत सुनोगे सिलसिला मेरियां गल्लां मेरे गीत। मेहमान ने जी सहजप्रीत कौर। 7 बजे का समा रहेगा प्रोग्राम शाम सुहानी का, जिस दे तहत सुनोगे अज तुसी प्रोग्राम दे तहत सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो कि आधारित होगा जी गुरप्रीत घुग्गी ते। प्रोग्राम के दरम्यान 7:30 बजे पंजाबी विच खबरां रिले करांगे आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो।

8 बजे प्रोग्राम रंगे गजल तुसी सुनोगे ते 8:45 ते हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन सुनोगे। समाचार संध्या 9 बजे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन रिले करांगे आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो ते 9:15 तो लैके 11 बजे तक सुनोगे विविध भारती सेवा दे प्रसारण।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा ते इस वक्त तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: प्रोग्राम दे तहत हुण सुनदे हां जी आपां भाई सतविंदर सिंह रागी ते भाई हरविंदर सिंह रागी ते उन्हां दे रागी जत्थे पासो गायन ए शब्द।

प्रोग्राम अमृत वेला तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा तो इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक सवेर दे 6:36 ते 8 सैकेंड होए ने ते हुण सुनदे हां जी आपां भाई जोगिंदर सिंह रियार ते उन्हां दे रागी जत्थे पासों गाए ए शब्द।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: हुण सुनदे हां जी आपां भगती रचना लखवीर लखा दी आवाज़ दे विच।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना पुलना मिति 31 मई दिन ऐतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बाता पुराने

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 प्राप्त की जा सकती है।

आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिति 3 मई 2026 दिन शनिवार शाम 7 बजे प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने दे तहत आपां गल करांगे गुरप्रीत घुग्गी जी दे जीवन बारे। ते प्रोग्राम पेश करांगी मैं यानी कि सुखदीप कौर। सो सुनना ना भुलना मिति 3 मई दिन शनिवार शाम 7 बजे प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने।

0: और बात बनेगी एक खूबसूरत एहसास और हर गीत छू जाएगा दिल के जज्बात।
1: जी हां श्रोतियो, गीता ते गल्ला दे जज्बाता दे नाल भरिया होया प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत प्रोग्राम युवाणी दे तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी सहजप्रीत कौर उर्फ मन्नत दे नाल। गल्ला होणगीआं इन्हां दे दिल दीआं ते सुणांगे जी इन्हां दे पसंदीदा गीतां नूं। मिती 30 मई दिन शनिवार शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सुनना ना भुलना मिती 30 मई दिन शनिवार शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी के तहत हफ्तावारी सिलसिला मेरिया गल्ला मेरे गीत।
2: जी दोस्तों, प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना एक असी भी तुहानू दे रहे हैं जी। प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना यह है जी, मिति 31 मई दिन एतवार सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम निक्के निक्के तारे, जिस विच तुहाडी मुलाकात करवाई जाएगी 10वीं ते 12वीं जमात दिया मैरिट दे विच आए हैं विद्यार्थियों के नाल। प्रोग्राम पेश करेंगे श्री मनदीप रजौरा, प्रोग्राम के निर्माता निर्देशक भी श्री मनदीप रजौरा ने। सो जरूर सुनियो कल सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निक्के निक्के तारे ते 0164-22-40-331 प्रोग्राम सजरी सवेर तहत सिलसिला मॉर्निंग न्यूज़ दे विच ये नंबर डायल हो चुका है जी। आप हुण सवाल पुछांगे ते देखदे हां इन्हां दा नाम की आ और की सानू ये जिहड़े साडे द्वारा पुछे गए सवाल ने उन्हां दे जवाब देणगे या फिर असफल रहणगे। हैलो
3: हैलो,
2: हाँ जी नाम दस दो पहला तां जी।
3: शगनवीर कौर।
2: शगनवीर कौर,
3: पिंड बीबी वाला
2: नाम बड़ा सोहना थोड़ा रजे। शगनवीर कौर ठीक है जी। ते साडे प्रसारण सुनते रहने हो?
3: हाँ जी।
2: ते फिर पूछिए तुहानू दो सवाल।
3: पुछो जी।
2: दस दोगे सवालों के जवाब?
3: हाँ जी।
2: चलो तुसी मैनू ये दसना, मैं सवाल आसान जी पूछ रहा अज, बड़े औखे नहीं पूछ रहा भी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जेडे हुणे बने ने उन्हां दा नाम की हैगा? 10 मई 2026 नूं मुख्यमंत्री तमिलनाडु दे बने ने, उन्हां दा नाम दस दो। बड़े सुर्खियां च ने अजकल हो, नहीं पता? नहीं पता जी? नहीं जी, गलत हो गया जी तुहाडा जवाब। ते रेडियो सेट ते इसका सही आंसर सुनो जी। शुक्रिया जी कॉल करने लई। लो जी, तमिलनाडु के जेडे नवे मुख्यमंत्री बने ने उन्हां दा नाम है जी सी

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਜਰੀ ਸਵੇਰ ਤਹਿਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੋਨੀਕਿਊਸ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏ ਆਈ ਆਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:59 'ਤੇ 42 ਸਕਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 8 ਵਜੇ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ 8:15 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ 8:30 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: के 15,000 सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
7: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।

विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु

0: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय

0: ये हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून।

0: Marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। सरकार ने पछमी एशिया विच टकराव कारण आलमी ऊर्जा सप्लाई च विघन दे मद्देनजर जनतक खेतर दियां तेल मार्केटिंग कंपनियां नूं 30 दिनां दे एलपीजी भंडारां नूं सुरक्षित रखण दे निर्देश दित्ते। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवारक सेहत सर्वेखण के 6वें दौर के अंकड़े जारी किए। पंजाब दी 102 स्थानक इकाइयां लई हुई चोणां च सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 1977 वार्डां विचों 958 ते वड्डी जित हासिल की। मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा समेत देश के कई सूबों च गरज चमक नाल गड़ेमारी की पेशीनगोई की। हांगकांग में चल रही एशियन अंडर 20 एथलैटिक चैंपियनशिप च भारतीय अथलीटा ने शानदार प्रदर्शन करदिया 4 सोने के तमगिया समेत 8 तमगे जिते। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकटों से हरा के फाइनल में जगह बनाई। सरकार ने पछमी एशिया में टकराव कारण आलमी ऊर्जा सप्लाई में विघन के मद्देनजर जनतक खेतर दियां तेल मार्केटिंग कंपनियां 30 दिनां दे एलपीजी भंडारां नूं सुरक्षित रखण दे निर्देश दित्ते ने। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय दी संयुक्त सकत्तर सुजाता शर्मा ने कल नवीं दिल्ली च यह जानकारी दित्ती। उन्हां कहा कि भारत अपने कच्चे तेल समर्था नूं वधाउण लई काम कर रहा है।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
1: सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ईंधन सुरक्षा नूं मजबूत करन ते रणनीतिक भंडारा राही निर्विघन सप्लाई नूं यकीनी बनाउण ते काम कर रही है। सुकत्तर ने कहा कि देश च पेट्रोल डीजल एलपीजी कच्चा तेल ते ढुकवें गैस ते ढुकवें भंडार ने। उन्हां कहा कि किसी भी एलपीजी वंड केंद्र ते सप्लाई दी घाट दी कोई खबर नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: विदेश मंत्रालय के वधीक सकत्तर असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी ते पछमी एशिया खेतर च भारतीय दूतकार भारतीय नागरिकां नूं समय सिर सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान बंदरगाहां जहाजरानी ते जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशक उपेश कुमार शर्मा ने दस्या कि मंत्रालय समुद्री यात्रियों की भलाई ते सुचारू समुद्री संचालन नूं यकीनी बनाउण वास्ते काम कर रहा है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने कल राष्ट्रीय परिवारक सेहत सर्वेखण के 6वें दौर के अंकड़े जारी किए। सर्वेखण मुताबक भारत ने मां ते बच्चे की सेहत पोषण ते वित्तीय सुरक्षा विच तेजी नाल तरक्की की है। सर्वेखण के मुताबक संस्थागत जनेपे 88.6% तो वध के 90.6% हो गए ने। सर्वेखण विच यह भी कहा गया कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 ते बनी हुई है। सर्वेखण मुताबक 12 तो 23 महीनों की उम्र के बच्चों लई टीकाकरण कवरेज लगातार 96% तो उपर बनी हुई है। सेहत मंत्रालय ने दसी है कि सुधार मिशन परिवार विकास समेत राष्ट्रीय परिवार नियोजन प्रोग्रामा दे निरंतर प्रभाव नूं दर्शाउंदे ने। सर्वेखण ने औरतां दे डिजिटल समावेश ते वित्तीय सशक्तिकरण विच वी स्थिर प्रगति हुई है। इस विच कहा गया है कि इंटरनेट की वरतों करन वालियां औरतां दी गिनती लगभग दुगनी होकर 64.3% हो गई है। सर्वेखण विच कहा गया है कि आयुष्मान भारत ते सेहत सुरक्षा पहलकदमियां ने सेहत संभाल च वित्तीय सुरक्षा नूं मजबूत कीता है।

0: अब के बरस।
1: जी दोस्तों, आज दे प्रोग्राम दे आखिर दे विच सुनदियां जी करमा फिल्म विचों इस गीत नूं आवाज़ां ने मोहम्मद अजीज़, कविता कृष्णा मूर्ति ते साथियां दियां।

हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम महक पंजाब दी एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रसारण। साडी स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक सवेर दे 8:59 ते 46 सैकेंड होए ने। हुण तो लैके सवेर दे 10 बजे तक रिले करांगे विविध भारती मुंबई दे प्रसारण।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कदर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाजें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

सर्दी के मौसम में हीटर के जैसी हूँ मैं, टेम्परेचर नापू अच्छा थर्मामीटर सी हूँ मैं, खुद का ख्याल मुझको ना कोई बेखुदी, तेरी नजरों से फिर क्यों होती है गुदगुदी मुझको पट

तो मौज कर ले, मैं तो हूँ रेडी, कब से आके प्रपोज कर ले। दिल में कुछ पिंक है तो उसका तू साइन दे दे, मार्कर में इंक है।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग
2: प्यार का।

0: सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हीरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम हीरोपंती 2।
1: The fucker, the fucker, so the

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते।

0: सुनते हैं सखी सहेली।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

इस गाने के साथ ही आज का चित्तलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे। पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: क्या
1: हाहाकार?
2: तेरे बाप का राजा क्या?
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: क्या बात कर रहे सर?
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
1: अरे यार तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की बात?
4: ना ना, दोस्त है तो घर पे आ।
1: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे 10 लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
5: क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी क्या?
1: अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
5: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
1: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।
6: हंसता हूँ

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे, वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में

स्पर्श करना शुरू किया, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं, लेकिन परेश रावल का काम नहीं बना।

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मुरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए। धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

0: परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ए इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत,
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी सोना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा, क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है?
3: ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
4: डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए यार, तेरे को क्या हो गया? चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से?
2: हाँ,
1: बचपन से मेरा ये नाम है। और मुझे अभी बताती हो तुम? ले, अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथीलाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस, अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथीलाल है, अभी जीसस।
3: गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
5: भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
6: नहीं है। क्यों
5: नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया
6: है?
5: तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
7: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
5: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
6: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
8: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
5: ये इसके दिल में खोट है।
7: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता है।
5: हाँ तो मुफ्त में रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
7: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
5: हाँ तो करना तू।
7: हाँ तो तू भी करना।
5: हाँ तो कागज लेके आना तू।
7: तू कागज ले आ।
5: अरे मैं क्यों लेके आऊं?
7: मैं क्यों?
5: तुम दोनों में से दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके जाओ।
6: इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
5: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
7: बताओ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तक तू कर ले साइन, साइन कर।
9: गोलमाल है भाई सब।

0: कमाल है।
1: क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना?
2: ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
1: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे। साइन कर।
0: फुल माल है भाई, फुल माल है।
1: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
3: कौन सा गाना?
1: साफ सुनाई दे रहा है।
2: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ उसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो उसको।
1: ये तो साइन कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। गाने गाने लगाए ले, साइन कर रहे हैं। गाने
4: हेलो
2: हेलो देवी प्रसाद
1: चम्मा। नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
2: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
1: वो तो मैं खा गया।
5: खा गए?
1: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
6: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
7: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
6: पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: जा।
1: हीरा फेरी फिर हीरा फेरी, आँखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
2: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहाँ पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
3: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे?
2: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमर जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
1: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
4: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी, हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना

0: हो गई है। घर एकदम शमशान हो गया था और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
1: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
2: मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का। ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाला, तेरा नाम क्या है?
3: लिसन जेंटलमैन।
2: ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
3: I'm sorry.
2: अबे सॉरी क्या, इंडिया समझा है? गुना करो, सॉरी बोलो।
4: क्या हुआ बड़ी जी?
2: अब ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
1: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं। उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माय गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
5: किसे भेजनी है नोटिस?
6: भगवान को।
5: मिस्टर भगवान? सरनेम?
6: पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
5: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
6: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
5: अच्छा है?

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद हुए
5: हैं। उन्हें तुसी विविध भारती सेवा दे प्रसारण सुन रहे सी।

0: चिंगम्स आती हैं, उसके पैचेस आते हैं, टेबलेट्स आती हैं, तो उससे आपकी क्रेविंग खत्म हो जाती है कि आपको फिर स्मोक करने का इच्छा है, लेकिन वो बहुत ही रेगुलेटेड डोज में आपको लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे और दूसरी दवाइयां भी है, जैसे चैम्पिक्स नाम की नई गोली है, वो भी जो है इसमें काफी हेल्प करती है इसको छोड़ने में। उसका पर्टिकुलर एक कोर्स होता है 4 से 6 महीने का, तो वो कोर्स आप आए यहाँ पे एम्स के अंदर, आप साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर डी एडिक्शन सेंटर है, वहां पर वो दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी। आपको पहले ये निश्चय करके आना कि मुझे छोड़ना है, उसके बाद वो कोर्स देगा, धीरे धीरे वो दवाइयां जो है खत्म हो जाएंगे 6-8 महीने में, और उसके बाद आपका ये लत छूट सकती है।
1: इलाज के नाल नाल मरीजा नूं तंबाकू दे नुकसान जां सरकार वल्लों इस अजिहे भयानक बीमारी दे विच ग्रस्त मरीजां लई दित्ते जांदी सहायता बारे भी उन्हां नूं दसो, जां कोई स्कीम अजिही सरकार वल्लों की निर्देश ने?
0: तो हमारे यहाँ पर जो कैंसर के पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि भी जैसे कोई अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है, या कोई अपने भाई के ट्रीटमेंट में आया हुआ है जिसको मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, और कई बार हमें पता चलता है कि उसके मुंह में भी तंबाकू है जो लेके आ रहा है, तो हम सबसे पहले उसको ये कहते हैं कि भाई आप इनको कैंसर हो गया तो आपको भी तो चांस है होने का कैंसर। हम अवेयरनेस प्रोग्राम है, अभी हमने कैंसर अवेयरनेस बस जो है वो अवेल करी है, उसमें हम गांव-गांव में जाकर पंजाब के जैसे पहले बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एरियाज हैं पहले हम वहां पर जाएंगे और वहां पर उन पे पब्लिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, स्कूलों के अंदर हॉस्पिटल में जो पब्लिक आ रही है उनको, कि किस तरह से तंबाकू के सेवन को हम रोकें और किस तरह से हम इसको, अगर जो जिनको लत लग गई है उनको कैसे हम उसको छुड़वाएं, तो इस तरह के उपायों के बारे में बताएंगे और इससे क्या क्या तकलीफें होती हैं उसके बारे में डिटेल से बताएंगे।
1: डॉक्टर साहब अखीर दे विच तुहाडा सुनेहा सुनने वालों नूं?
0: तो मेरा सुनने वालों से यही गुजारिश है कि आप अपना जो पैसा है उसको सही जगह पे लगाएं। आप तंबाकू जो है इतना महंगा हो गया है, सिगरेट्स का रेट सरकार ने इसलिए बढ़ाया है ताकि आप उसका सेवन ना करें, और वो पैसा अगर आप फल फ्रूट दूध दही पौष्टिक आहार हैं अगर उसके लिए आप लगाएंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आप बीमारियों से भी बचे जा सकते हैं।
1: जी शुक्रिया डॉक्टर साहब।
2: श्रोतियों ना सिर्फ तंबाकू दे नाल पैदा होने वाला धुआं बल्कि चबे जाण वाला तंबाकू भी उन्ना ही खतरनाक है, इस नाल मुंह अते गले दा कैंसर कई गुणा वध सकदा है। तंबाकू दी वरतों करन वाले बहुत सारे नौजवान बहुत सारे साथी अजिहे होणगे जो तंबाकू नूं छड्डना चाहुंदे ने पर छड्ड नहीं पाउंदे क्योंकि इस दी लत बहुत माड़ी हुंदी है। तंबाकू छड्डण दे इन्ने फायदे होण दे बावजूद भी असी तंबाकू क्यों नहीं छड्ड पाउंदे, मानसिक तौर ते तंबाकू किस तरह सानू अपनी गिरफ्त दे विच लै लैंदा है अते किस तरह सानू अपना गुलाम बनाउंदा है, इह जानन लई असी बठिंडा एम्स हस्पताल दे मनोरोग माहर डॉक्टर जितेंद्र जुनेजा जी दे नाल गलबात कीती।
3: डॉक्टर साहब तंबाकू जिहड़े लोग सेवन करदे ने की कारण है कि वह तंबाकू वल खिचे जाते हैं, तंबाकू नाल बने पदार्थों वल वह खिचे चले जाते हैं, फिर अगे चल के वह उसनू छड़ नहीं पाते, की कारण है, मानसिक तौर पर तुसी इसनू किवें देखते हो?
4: तंबाकू का सेवन पूरी दुनिया काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी कॉमन है। असी अपने देश की गल करिए लगभग 1700 ईस्वी इंडिया च आया सीगा, उस तो पहले इंडिया च नहीं सीगा।
3: जी
4: काफ़ी सारी थियोरीज ने कि तंबाकू लोग क्यों लेंदे ने, उहदे च दो जिहड़े इंपोर्टेंट ने जिदे वास्ते कि अंग्रेज इहनू लै के आए सीगे।
3: जी
4: क्योंकि जे असीं हिस्टरी नूं देखदे हां तां तुहानूं समझ आएगी कि अच्छा ये क्यों इस्तेमाल होंदा।
3: जी
4: अंग्रेज जद तंबाकू नूं इंडिया च लै के आए सी तां उहनां दा दो मकसद सीगे, एक कि इहनूं इहदा व्यापार किया जा सके।
3: जी
4: हुण जद व्यापार करना है तो उहदे फिर कस्टमर भी होणगे।
3: बिल्कुल
4: कस्टमर यह देखेगा कि अच्छा जिहड़े साडे लेबर है मजदूर ने भावें वह फैक्ट्रियां च ने भावें खेतां च ने, तंबाकू का सेवन करन नाल उन्हां दी जिहड़ी एनर्जी वह वधदी है या उन्हां दी थकान घटदी है।
3: जी
4: क्योंकि तंबाकू सेवन नाल दिमाग ते जिहड़े निकोटीन रिसेप्टर साडे हुंदे ने वह एक्टिवेट हुंदे ने।
3: जी
4: इस करके साडी वह थकान खत्म हो जाती है या दिमाग एक्टिव हो जाता है, तो इस करके साडी काम करन दी क्षमता थोड़ी होर वध जाती है।
3: जी
4: इस करके तंबाकू का इस्तेमाल साडे देश से शुरू होया। तो कोई भी व्यापार तुसी करना चाहोगे तो तुसी ये चाहोगी कि मेरा कस्टमर जिन्ना लंबा टाइम इहदा सेवन करे इहदा इस्तेमाल करे मेरा बिजनेस उन्ना ज्यादा चंगा चलेगा।
3: जी
4: इस करके ये देखा गया कि भावें खाण पीण दी चीज़ां ने भावें तंबाकू है, जे बच्चियां नूं या नौजवानां नूं इहदे प्रति जागरूक किया जाए कि अच्छा तुसी इहदा इस्तेमाल कर सकते हो तां उह ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
3: ਜੀ
4: ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟਵੇ ਡਰੱਗ ਹੈ।
3: ਜੀ
4: ਗੇਟਵੇ ਡਰੱਗ

0: और बात बनेगी एक खूबसूरत एहसास और हर गीत छू जाएगा दिल के जज्बात।
1: जी हां श्रोतियों, गीता ते गल्ला दे जज्बाता दे नाल भरिया होया प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत प्रोग्राम युवाणी दे तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी सहजप्रीत कौर उर्फ मन्नत दे नाल। गल्ला होणगीआं इन्हां दे दिल दीआं ते सुणांगे जी इन्हां दे पसंदीदा गीतां नूं। मिती 30 मई दिन शनिवार शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सुनना ना भुलना मिती 30 मई दिन शनिवार शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी के तहत हफ्तावारी सिलसिला मेरिया गल्ला मेरे गीत।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना पुलना मिति 31 मई दिन ऐतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बाता पुराने पंजाब दियां।

आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिति 3 मई 2026 दिन शनिवार शाम 7 बजे प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने दे तहत आपां गल करांगे गुरप्रीत घुग्गी जी दे जीवन बारे। ते प्रोग्राम पेश करांगी मैं यानी कि सुखदीप कौर। सो सुनना ना भुलना मिति 3 मई दिन शनिवार शाम 7 बजे प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने।

प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना मिति 31 मई दिन ऐतवार सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम निक्के निक्के तारे जिस विच तुहाडी मुलाकात करवाई जाएगी 10वीं अते 12वीं जमात दियां मैरिट दे विद्यार्थी।

0: uncertainty has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbha and Chhattisgarh. The Met Department said that northeastern states and coastal Karnataka are likely to experience thunderstorm accompanied with lightning. Heatwave conditions are likely to prevail over West Madhya Pradesh and Telangana. On to sports.
1: Ayaka Hobara and Yuichi Shimogami in the semi-finals of the Singapore Open Super 750 tournament today. The Indian pair secured their semi-final berth after defeating Malaysia's Chen Thangri and Toh Ey in the quarter-finals yesterday. Meanwhile, India's men's doubles duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
2: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने

0: आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत की 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,40,00,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र

0: के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मारतंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मारतंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मारतंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मारतंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमेनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।

सुरीली दोपहर सुन रहे तमाम श्रोतियां नूं अमरजीत मान वालों प्यार भरी नमस्कार। सिफर 1624243031 नंबर डायल करके श्रोते प्रोग्राम च शिरकत कर सकते हैं ते सुन सकते हैं अपने पसंदीदा पंजाबी फिल्मी ते गैर फिल्मी पंजाबी गीत। करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत अमरिंदर गिल दे गाए इस गीते नाल।

0: हर बात बनेगी एक खूबसूरत एहसास और हर गीत छू जाएगा दिल के जज्बात।
1: जी हाँ श्रोतियो, गीता दे गल्ला दे जज्बाता दे नाल भरिया होया प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत प्रोग्राम युवाणी दे तहत तुसी सुनोगे नौजवान विद्यार्थी सहजप्रीत कौर उर्फ मन्नत दे नाल। गल्ला होणगीआं इन्हां दे दिल दीआं ते सुणांगे जी इन्हां दे पसंदीदा गीतां नूं। मिती 30 मई दिन शनिवार शाम 6:30 बजे प्रोग्राम मेरिया गल्ला मेरे गीत दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सुनना ना भुलना मिती 30 मई दिन शनिवार शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी के तहत हफ्तावारी सिलसिला मेरिया गल्ला मेरे गीत।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना पुलना मिति 31 मई दिन एतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बाता पुराने पंजाब दियां।

इस प्रोग्राम च सानू तकनीकी साथ समूह टेक्नीकल स्टाफ वालों मिलिया। प्रोग्राम के निर्माता श्री बलजीत शर्मा, इस दे नाल ही मैनू अमरजीत मान नू। प्रोग्राम सुरीली दुपहर खत्म करने दिओ, आ गया नमस्कार।

मलिक भेजी है। शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से ये पत्र आया है हमारे पास। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली, आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार वीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे हैं। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाईकोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।

0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी मां ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर,
3: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
2: कौवी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए। क्यों?
4: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहां गई थी तुम?
4: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मई पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
4: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
4: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं?
3: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना।
4: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
4: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: ख्याल है?
1: क्या
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी बेनी तुम अच्छे हो जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: इधर आओ ना
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी बेनी बेनी बेनी बेनी क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिक्र मत करो, जरा सी गिदी ने से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, नहीं मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।

0: बेनी, एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
1: बताऊं? दोनों।
0: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
1: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
1: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
0: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ।
3: तुम बेनी हो ना?
1: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
3: हाँ मैं लॉरेंस हूँ भाई।
1: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
3: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
1: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका
3: लॉरेंस। और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
1: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
3: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
3: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
3: Exactly.
1: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
3: नमस्ते नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
0: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
3: सब वो बातें रहने दीजिए अब। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: चेस्ट में पेन है।
3: हाँ।
1: दिल की तरफ भी पेन है।
3: वैसे
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
0: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
3: हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
0: जी,
3: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
0: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
3: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
1: हाँ हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
3: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: बाय।
0: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
0: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम?
0: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
0: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
0: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: जरा आहिस्ता बोलो।
0: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान

0: बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
1: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
1: सोचती नहीं बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
1: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। हा? इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
1: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
1: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
1: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे, टेरर।
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है।
1: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
1: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझाकर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकती हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया।

0: चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
1: गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
2: वो बेनी कहाँ है?
1: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
2: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
1: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
2: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
1: डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
2: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
2: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
1: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
2: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं।
3: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
4: ओ डॉक्टर,
3: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
4: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
3: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
4: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
3: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
4: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
3: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
1: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
4: तुम्हारे लिए एक चीज है।
1: अच्छा, देखो तो।
4: लो, देख लो।
1: साड़ी, ये अब काहे को? और यहां
4: मेरी ओर से प्रेजेंट।
1: प्रेजेंट?
4: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
1: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
4: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
1: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
4: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझ हो, तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो, ये ऐसे ऐसे।

0: ബേനി
1: कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गया।
2: ओह नो,
1: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
2: आखिर ये हुआ कैसे?
1: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांच बाद मुझे होश आया। मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
3: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
4: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
3: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
4: मैं अब क्यों जीवित हूं गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
3: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो। हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे बेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
4: गिरजा
3: तेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
1: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
2: अच्छा,
1: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
5: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की झलक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: धन जवानी अपनी।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम
1: से बातचीत कर रही है विधि जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूं। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की

0: की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है, और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है, और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर, क्योंकि उन्हें उनकी
1: हाँ
0: गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: बिल्कुल।
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है, और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है,
1: हाँ
0: कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है, और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली बदमाश
0: जी
1: प्रैंक करने वाली
0: जी
1: हूं मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो
0: जी
1: सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी है।
1: सैडनेस है
0: जी
1: या किसी के लिए फील करना है,
0: हाँ
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूं।
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी,
0: हाँ
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी,
0: जी
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको, सचिन को लगाया ना,
0: जी
1: वो मेरा
0: जी जी जी
1: एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहां पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो, और जो विर्ष खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम
0: यानी इस साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही
1: कर
0: हैं,
1: रही हैं,
0: और गुंजा में
1: करती रहूंगी
0: उन्होंने सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं
0: अच्छा
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ।
0: जी
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, ठीक है।
0: अच्छा
1: और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैं कहा, दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
0: अच्छा
1: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है,
0: जी
1: लेकिन चलिए जो बने। लेकिन उन्होंने देखा मुझे, 14-15 दिन
0: जी
1: ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने अभी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप
1: हाँ
0: अभिनेत्री बनेंगी,
1: हाँ
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था,
0: अच्छा
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना,
0: हाँ
1: लंच
0: हाँ
1: ब्रेक
0: हाँ
1: वगैरह,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: बोलती थी बुलाओ साधना को,
0: हाँ
1: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी
0: जी
1: चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी
0: अरे
1: स्कूल
0: वाह।
1: में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा
1: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना
1: हाँ
0: गाओ, लेकिन

0: अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
0: है ना।
1: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस समय आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
0: उतनी बुलंद आवाज।
1: हाँ, बुलंद आवाज थी जी।
0: तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम

0: आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब
1: हाँ
0: छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध
1: हाँ
0: भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, और मैं शायद गलत नहीं हूं कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद
1: हाँ,
0: किए होंगे।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ। तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो। तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है जी।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा में, और हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूँ।
0: वो किस्सा भी जरा बता दें।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ,
0: हाँ,
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना
0: जी,
1: था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार

0: में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं, कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो हमें वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो
1: हाँ,
0: किरदार किया कैसे आपने?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा।
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ। तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा।
1: ये है, ये फ्रेम है। ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता। पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी,
0: डीओपी वाला।
1: हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से। तो वो बोलते सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा।
1: तो दो तीन चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
0: हाँ।
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी। तो
0: जी।
1: वो नेचुरली था अंदर तो आ गया। मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती। कि आप
0: अच्छा।
1: पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, वो जो चीज है ही नहीं आपके अंदर। और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूं या सुंदर लग रहा हूं, चले आते हैं मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके। तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
0: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है।
1: हाँ,
0: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में,
1: बिल्कुल।
0: अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूं, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूं, तो
1: हाँ
0: मैं फिल्मों में कर रही हूं तो मैं टीवी में क्यों करूं।
1: हाँ ऐसा
0: एक
1: तो कुछ
0: ये
1: नहीं।
0: ईगो
1: हाँ
0: भी सामान्यतः लोगों में होता है
1: होता
0: कि हमने
1: है।
0: किया है,
1: हाँ
0: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं, कुछ तैयार
0: नेचुरली?
1: नहीं किया। मुझे पता था मीडिया है ना,
0: हाँ
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता
0: जी
1: है ना। हमको वहां भी लाइनें याद करनी होंगी।
0: जी
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं, हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ
0: जी
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं।
0: जी
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं
1: नहीं
0: करना ही
1: करना है।
0: एक्टिंग है।
1: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूं कि मैं किसी को बोल पाऊं। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूं
0: हाँ
1: कि
0: जी। हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो
1: हाँ
0: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
1: सुनाइए।
0: पसंद सुन ली जाए
1: अच्छा ऐसा।
0: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो।
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं।
0: जी
1: तो कुछ दिल ने कहा, और ऐसी भी बातें होती हैं,
0: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
1: खूबसूरत
0: है।
1: और
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: मीठा संगीत है।
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं, जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए,
0: अच्छा,
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे
0: हाँ।
1: तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी
0: जी।
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था,
0: अच्छा,
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे, तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं
0: हाँ,
1: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है,
0: जी जी
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी थोड़ा सा अच्छा सा रोल था।

0: और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
1: जी
0: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है,
1: जी
0: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा
1: जी
0: ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
1: जी
0: लेकिन हाँ, अच्छा लगा। प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
1: नहीं
0: प्रोडक्शन में,
1: जी जी
0: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है, बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
1: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे।
0: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था,
1: अच्छा
0: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं,
1: जी।
0: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी
1: चलिए
0: वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
1: आदतन
0: बैठने
1: अनुसार आप लड़कियों से
0: हाँ,
1: घिरी रहती
0: तो
1: थी
0: टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी।
1: जी।
0: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है, तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
1: नहीं,
0: हाँ
1: वैसे आप बहुत हॉट हैं, शॉल की जरूरत
0: हाँ
1: आपने तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के
0: हाँ
1: बाजी
0: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने,
1: जी।
0: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी,
1: जी
0: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो
1: ओके
0: जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में,
1: जी
0: तो वहां के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे
1: जी
0: बिल्कुल बेटी की
1: आबिद
0: तरह
1: रिजवी जी
0: वहां,
1: जी
0: तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सबटाइटल।
1: नीचे का
0: लेकिन
1: जी
0: वो ले गए
1: जी
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो
1: वही सेम
0: उसमें
1: फिल्म।
0: हाँ सेम फिल्म
1: ओह
0: लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी जुड़ना ऐसी फिल्म से।
1: जी
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी बिल्कुल।
0: साउथ में, सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: बोलती आंखें
0: हाँ तो इनको ऑन इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए,
1: जी
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, 2 बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना
1: जी
0: शायद,
1: जी
0: हाँ
1: जी उसके बाद ही थी
0: हाँ तो मस्ती में की बस, और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं,
1: जी।
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी,
1: अच्छा
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब,
1: जी जी
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है,
1: बहुत
0: देखिए
1: अच्छी
0: हाँ।
1: फिल्म जी।
0: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
1: हाँ
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे, लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण, अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके, दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं।
1: मिल के काम कर रहे
0: हाँ
1: हैं, पारिवारिक तरीके
0: हाँ
1: से काम हो
0: हाँ
1: रहा है
0: फिर
1: जी
0: मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी

0: भक्ति करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: मेरे पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है। तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम। हाँ। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार में जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
1: हाँ।
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा।
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए। हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करा रही थी।
0: होता ना दिमाग में शादी, फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म में उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो।
0: जी
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे,
0: जी
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए।

0: तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहां पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहां वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
1: जी
0: जिन्होंने बोल, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही प्यारी चढ़ाई वो,
1: जी
0: जो कि ब्लॉकबस्टर
1: जी
0: आज
1: सर
0: भी ब्लॉकबस्टर
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
1: जी
0: गंगा जैसन पावन पिरितिया हमार। तो
1: अच्छा
0: उसमें मैंने काम किया
1: जी
0: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको।
1: इतना लाइक
0: बहुत
1: ये तो नहीं
0: बहुत
1: लिया होगा।
0: बहुत अच्छी फिल्म बनी
1: जी जी
0: लेकिन,
1: बहुत प्यारी है,
0: हाँ
1: बहुत
0: वो,
1: अच्छी फिल्म
0: हाँ
1: जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन, लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती। ये जो भाषा का बदलाव है, इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी
0: बिल्कुल
1: अधिकतर
0: भी
1: लोगों
0: नहीं,
1: को।
0: मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
1: अच्छा
0: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
1: मतलब आप वो चाट और लस्सी
0: वो
1: खाते पीते
0: खाते
1: बड़ी
0: पीते,
1: हुई
0: हाँ,
1: हैं जी।
0: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। सिर्फ
1: अच्छा
0: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
1: अच्छा
0: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये,
1: सरदार
0: हाँ,
1: खड़े हैं और
0: तो
1: वो
0: हमारा
1: चीज हो रही है।
0: पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
1: जी
0: हाँ ये काफी फर्क है।
1: जी
0: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
1: अच्छा
0: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे
0: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
1: जी।
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा,
1: बहुत अच्छा।
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
0: हाँ इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं,
1: रविंद्र जैन वहां पे
0: हाँ
1: उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: गाया जा
0: रवि
1: रहा
0: जी,
1: होगा,
0: हाँ
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
0: बहुत
1: समय?
0: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा अगर आप
1: जी बहुत
0: ये,
1: खूबसूरत गीत
0: हाँ,
1: है
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था,
1: जी।
0: और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे, और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद?
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है, क्योंकि और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ
1: एक साथ,
0: बहुत बड़े कमरे में,
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा फेमस स्टूडियो।
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहां पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओ
0: विराजमान होंगे।
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ, कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुनाए,
0: 30 गाने, 30 धुनें।
1: गाने में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो
0: जी
1: बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो,
0: जी
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
0: शब्द भी
1: और
0: लिख
1: शब्द भी लिख लेते थे,
0: लेते
1: तो एक सेकंड में,
0: 30 गाने एक समय
1: हाँ
0: पे बना
1: बत्तीस
0: के
1: होंगे, तीस
0: सुनाना।
1: होंगे, मुझे इतना याद

0: लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का। दादा कह
1: लगातार।
0: रहे नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा, ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया। तो
1: और
0: उनसे
1: कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है
0: हाँ, उसके
1: अद्भुत।
0: बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए
1: हाँ
0: जिसमें राज बाबू राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
1: ये रविंद्र जी ने कहा
0: हाँ,
1: से जी।
0: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में। तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
1: जी। और
0: दादू
1: जब
0: दादू
1: टूर
0: ने।
1: करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
0: हाँ
1: आनंद ही अलग आता
0: हाँ
1: होगा
0: वो
1: देख के।
0: तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
1: अच्छा
0: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई,
1: हाँ,
0: अल्लड़पन कहते ना कि
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई
0: हाँ ये
1: बचपन से।
0: बात है। मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना,
0: हाँ
1: लगेगी तो
0: लगे
1: संभाल लेना।
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते
0: नहीं
1: फिरते?
0: नहीं बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी। तो ये
1: हाँ
0: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
1: अच्छा
0: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल जी नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
1: अरे वाह।
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो इन
1: हाँ,
0: लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल, बाबा ने
1: एक
0: बोल
1: बार में
0: दिया
1: बोल दिया
0: मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो।
1: यानी
0: तो
1: आपको
0: हाँ
1: मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा
0: हाँ
1: मिला, दोनों
0: मेरी
1: जगह
0: सास
1: बढ़िया
0: ससुर तो बहुत अच्छे थे,
1: जी।
0: तो जहां भी हैं बस खुश रहे।
1: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे, हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है
0: नहीं
1: या?
0: नहीं मेरे बेटा तो बहुत दूर है,
1: अच्छा
0: उसको फेमस नहीं होना है, वो
1: जी
0: बिल्कुल ही अलग सोचता है। और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं,
1: जी
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
1: जी
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, उस
0: तो
1: समय वो चल
0: फिर
1: नहीं
0: वो
1: पाई।
0: उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब
0: तो
1: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
0: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत करो अपनी,
0: हाँ अपनी मेहनत करो।
1: ये बहुत अच्छी बात है, उनको
0: क्योंकि मैंने
1: अपना
0: अपने
1: समझ
0: लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो
1: जी।
0: बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
1: लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30,

0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ
0: अब देखते हैं क्या होता है
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया, और
0: हाँ
1: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
0: ऐसा
1: हम मान
0: है।
1: के चलते हैं।
0: चलिए
1: बिल्कुल, ये
0: ठीक
1: जगह
0: है।
1: बड़ी
0: हाँ
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
0: हाँ
1: आए हैं।
0: हाँ
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर
0: हाँ
1: अभी आप तस्वीरें देखते हुए
0: हाँ
1: आ रहे थे तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
0: अच्छी
1: यहाँ
0: होती
1: की।
0: है। हाँ लेकिन एक चीज बता रही हूं मैं
1: जी
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ।
1: ऊर्जा सकारात्मक
0: हाँ
1: है।
0: वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूं जो उस दौर में है, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीजें हैं कि मुझे
1: समस्या
0: ऐसा
1: उठने लगी
0: लगा
1: आपने।
0: कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और
1: क्या
0: फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस
0: थैंक यू।
1: अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम भी
0: मैं
1: सुन
0: एक
1: लें।
0: कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
1: जी
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है।
1: जी
0: उनका एक गाना गा देती हूँ।
1: जी
0: देखो पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, बस एक

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता
1: ख्याल
0: है।
1: होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं।
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि
0: हाँ
1: आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन
0: हाँ
1: उसको एहसास नहीं है। तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके,
0: अच्छा
1: और साड़ियां वीस वगैरह। मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है, ये
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें, तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत
0: अच्छा
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
0: अरे वाह
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहले।
0: जरूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा
1: अच्छा
0: लगता है
1: लगा,
0: विविध भारती में जब आप
1: बिल्कुल,
0: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहां तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: तू पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम

0: की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

प्रोग्राम गल्लां चुगल सुन रहे तमाम श्रोतियां दा इस प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे आं। श्रोतियो, अज प्रोग्राम गल्लां चुगल दे तहत तुसीं सुनोगे साडा विशेष प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत एक विशेष सिलसिला दर्शन रूप अभ्यास। प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक ने बलजीत शर्मा। आओ सुनदे आं विशेष प्रोग्राम अरदास दर्शन रूप अभ्यास।

खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, सब धर्मां दी अपनी अपनी महानता है। सिख धर्म जिसनू के सारी मनुखता दा धर्म कहा जा सकता है, जिस दी नींह शहीदां दीआं हड्डियां ते रखी गई है। अज उस सिख धर्म दी महानता दे इतिहास दे कुछ पन्ने आप सब नाल रल के सांझे करन दा यतन करदे हां।

ऐसे गुरु पंथ नूं ही दसवें पाशा जी ने खालसा मेरो रूप है खास आख्या ते तस्लीम कीता।

इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोर परे, नहीं मोसो गरीब करोर परे, एहो गुरु खालसा सी, एहो गुरु पंथ। साह संगत जी, गुरु पंथ दा संकल्प एक महान रूहानी संकल्प भी है, ते एक महान रूहानी प्राप्ति भी। संसार दी धार्मिक विचारधारा नू ए सिख धर्म दी नवेकली देण है। ऐसी मिसाल होर किसे धर्म पास नहीं के गुरु दी आदर्शक जोत गुरु पंथ हो निबड़ी होवे, के गुरु दी पावन बाणी दी रूहानी बरकत समूहक कौमी किरदार विच सिंजर गई होवे। साध संगत जी, इत्थे खालसा जी दे गुरु रूप नू पहचानना जरूरी जापदा है। इस रूप नू ना कोई गिनती निश्चित करदी है, ना कोई वेस, ना कोई स्थानिक स्थिति निश्चित करदी है, ना कोई इतिहासिक घटना कर्म। ए ता सरबत खालसा जी दी एकागर निरपै उच्ची सुरत है, जो गुरबाणी दी उदात आत्मक प्रेरणा नाल अभेद हो गई है। एहो संगत दास देव काली निराकारी रूप है। इसे रूप नू कलगी तारे पातशाह ने चमकौर दी गड़ी विच गुरता प्रदान कीती। ओ पांच सिंह जिन्ना नू ए गुरता दिती गई उस लिव दे धारनी सन, जिसने उन्ना दे आचरण नू गुर शब्द नाल एक सौर कीता होया सी। इस नाते ओ लिव मार्ग दे प्रतिनिध सन, लिव मार्ग दे समस्त पांधियां नू ही पंथ कहा जा सकता है, ते इसे समुच नू ही गुरता प्राप्त होई।

युवाओं की ताकत से बदलता है जमाना, इनके इरादों से रोशन होता है फसाना। जो ठान ले मंजिल को पाने की बात, फिर मुश्किलों को भी पढ़ना पड़ता है झुक जाना। जी हाँ श्रोतो, युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी दे विच अज साडे श्रोतियां नूं प्यार भरी नमस्कार। ते अज दे प्रोग्राम युववाणी दे तहत साडा इह सिलसिला है जी खास मेरियां गल्लां मेरे गीत। हफ्तावारी सिलसिला मेरियां गल्लां मेरे गीत दे विच अज जो मेहमान प्रोग्राम दे विच मेज़बान बन के श्रोतियां दे रूबरू हो रहे ने, उन्होंने जी नौजवान विद्यार्थन सहजप्रीत कौर उर्फ मन्नत। आओ सुनते हैं प्रोग्राम मेरियां गल्लां मेरे गीत, जो कि लेके हाजिर ने सहजप्रीत कौर उर्फ मन्नत।

0: कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
1: सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी सुन रहे हो अपना मनपसंद प्रोग्राम मेरियां गल्लां मेरे गीत अते मैं हां तुहाडी अपनी सहज प्रीत कौर उस मन्नत। अज प्रोग्राम विच असी करांगे दिल दियां गल्लां, सांझियां करांगे हसन मुस्कुराउण वाले पल अते सुनांगे कुछ खास ते मेरे मनपसंद गीत। दोस्तों, जिंदगी दी दौड़ विच कई बार असी अपने दिल दियां गल्लां अपने आप नाल भी नहीं कर पाउंदे, तां इसे लई ए प्रोग्राम है एक निक्की जिही कोशिश तुहाडे नाल जुड़न दी, तुहाडे दिल तक पहुंचन। अज मैं अपने युवा साथियां नाल रहांगी रूबरू, करांगे दिल खोल के गल्लां ते हर गल दे नाल होवेगा संगीत दा सुहावा साथ। तां बने रहो मेरे नाल क्योंकि हुण शुरू होण जा रहा है गल्लां ते गीतां दा खूबसूरत सफर मेरियां गल्लां मेरे गीत। सो मैं जो भी काम शुरू करदी हां, हर एक काम नु शुरू करन तो पहला मेरी एक आदत है कि मैं परमात्मा दा नाम जरूर लैनी हां। सो जो अज दा ए गल्लां दा सिलसिला है, ओ भी मेरा मनना है कि आपां नु शुरू करना चाहिदा है मेरे फेवरेट सॉन्ग नाल, जो कि गाया है दलजीत दोसांझ ने, आर नानक पार नानक।

श्रोतो इस प्रोग्राम दे जरिए असी तुहानू रूबरू करवाने हां किसे ना किसे फिल्म दे या फिर किसे अजेही शख्सियत दे जिन्हां ने फिल्मी जगत की कारी अते गायकी दे खेतर विच मल्ला मारिया ने। ते अज दे प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने दे तहत जिस शख्सियत दे बारे असी गल करांगे वैसे तां ओह अपने आप दे विच काफी सीरियस शख्सियत ने पर जदों ओह कॉमेडी करदे ने तां सारी दुनिया नूं हसा दिंदे ने। उन्हां दी जबरदस्त कॉमेडी अते बाकमाल अदाकारी हमेशा ही श्रोतियां नूं पसंद आई है। बिल्कुल जी, अज आपां गल करांगे गुरप्रीत घुग्गी जी दे बारे।

अर्जुन हर गोबिंदनु, सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरी है, कर नौ ने दावे ताए, दसवें पाचा पंथ के वाले, शमशेर पिता सब ताई होना जी सहाय, हे अकाल पुरख सच्चे पातशाह जियो, दस गुरु साहबान शहीदो सिंगो सिंगनियो उचंगियो, अरदास बेनती है जी, बिरद बाणे दी लाज रखनी, कंड ते थापी देनी, चिड़िया तो बाज तड़ाउना, सवा लख नाल इक लड़ाउना।

0: अकाल पुरख सच्चे पातशाह जियो, दस गुरु साहबान, शहीदो सिंगो सिंगणियो, उचंगियो अरदास बेनती है जी, बिरद बाणे दी लाज रखनी, कंड ते थापी देनी, चिड़िया तो बाज तड़ाउना, सवा लख नाल इक लड़ाउना।
1: गल करांगे गुरप्रीत कुग्गी जी दे मुढले जीवन बारे। उन्हां दा असल नाम है जी गुरप्रीत सिंह वड़ैच। उन्हां दा जन्म होया 19 जून 1971 नूं गुरदासपुर पंजाब दे विच, ते उन्हां दे पिता जी दा नाम है सरदार गुरनाम सिंह ते माता दा नाम सुखविंदर कौर है। पढ़ाई लिखाई दी गल करिए तां उन्हां ने जिहड़ी अपनी उचेरी सिख्या ओह दुआबा कॉलेज जलंधर तों हासिल कीती। परिवार दी गल करिए तां गुरप्रीत कुग्गी दा विआह कुलजीत कौर नाल होया ते उन्हां दे दो बच्चे इक बेटा ते इक बेटी ने। गुरप्रीत कुग्गी जी दा नाम घरदे ने गुरप्रीत सिंह वड़ैच रखिया सी, पर इन्हां दे उस्ताद जो कि इन्हां दे चाचा जी वी लगदे ने, उन्हां ने इन्हां दा नाम गुरप्रीत वड़ैच तों गुरप्रीत कुग्गी रखिया ते अज वी उसे नाम नाल प्रसिद्ध ने।
2: एज ए कॉमेडियन मैं चाचा रौनकी राम जी दे शो रौनक मेला च आउण लग गया, ओह बड़ा हिट होया, ओहदे च मेरा नाम कुग्गी रखिया गया ते ओह फिर कुग्गी दा करैक्टर बड़ा हिट हो गया, मेरे नाम दे नाल ही जुड़ गया।
1: गुरप्रीत कुग्गी जी नूं एक्टिंग दा शौक सी जिहड़ा ओह बचपन तों सी, ते इह वड्डे होए एक्टर बनना चाहुंदे सी। पर जदों गुरप्रीत कुग्गी जी 10वीं जमात विच पढ़दे सी तां उहनां दे पिता जी नूं बिजनेस विच बहुत सारा नुकसान होया सी, जिस करके इहनां ने अपने परिवार दी सहायता करन दे लई नौकरी करन दा फैसला कीता। ते फिर इन्हां ने करतारपुर सब तहसील विच जाना शुरू कीता ते उत्थे एहे लोकां दे बयाने टाइप करदे सन। उत्थे इन्हां ने 7 रुपए दिहाड़ी ते 2 साल नौकरी कीती ते अपने परिवार दी सहायता कीती, ते जो अपनी जिंदगी दे विच उन्हां ने संघर्ष कीता उन्हां दी ही जुबानी सुनदियां एक इंटरव्यू दे विचों।
2: मेरे को इन्ने ज्यादा मजबूती नहीं सी कि मैं स्कूल या कॉलेज पढ़ सकां। गरीब बंदे नूं सब तों पहलां तां ख्वाब लैण दा कोई हक नहीं है। ऑडियंस दीआं तालियां, उन्हां दी एप्रिसिएशन इन्नी मोटिवेट कर दी कि हर वारी मैं जिन्ना कॉन्फिडेंस स्टेज ते लैके जाना उस तो डबल कॉन्फिडेंस नाल मैं स्टेज तो वापस। साडे इन्हां मुल्कां दी मैं कहांगा नहीं कि साडे मुल्क च ही प्रॉब्लम है, साडे इन्हां मुल्कां दे विच इह है कि गरीब बंदे नूं सब तो पहलां तां ख्वाब लैण दा कोई हक नहीं हुंदा। तो तू ख्वाब भी क्यों लिया, तू सोचिया भी क्यों? जदों मैं भी शुरुआत कीती ते दूरदर्शन उदों बड़ी वड्डी चीज़ हुंदा सी, ते असीं दूरदर्शन ते आउण दी जदों लालसा जागी तां पहला उत्थें सारिआं दा रिएक्शन इही सीगा वी इह दूरदर्शन दे अंदर किवें वड़ आउंदा मुंडा। एक्सप्रेशन या उन्हां दा ट्रीटमेंट इदां हुंदा सी वी तेरे वर्गे बंदे दा इत्थे की काम है। वो बैकग्राउंड लुक्स भी देसी सी, जाना भी साइकिल ते ना या बस दे पिछे लटक के जाना, तो फिर मेरी कोई भी चीज जिहड़ी उन्हां नूं सूट नहीं सी करदी, ना तां मेरी जेब च कोई पैसा, ना मेरे थले गड्डी। मैं गल कर रहा व्हेन आई वाज 17-18 ईयर्स ओल्ड। मेरे परिवार चो कोई एक्टर ना तो पहलो सी ना अजे तक बाद चो कोई बनिया, पर मैनूं बचपन तो 4th स्टैंडर्ड तो शौक पै गया स्कूल दे विच उठ के परफॉर्म करन दा, जिहड़ी सैटरडे बाल सभा लगदी हुंदी सी। फिर उस तो बाद मैं एक थिएटर ग्रुप दे नाल जुड़ गया, फिर असीं अपना थिएटर ग्रुप बना लिया। वो थिएटर करदे करदे अंदर लालसा बहुत जागी कि मैं हुण टीवी ते भी आवां। मैं डिसकरेज तां नहीं होया उत्थों लोकां कोलों क्योंकि मैनूं स्टेज ते मैं बड़ा अप्रीशिएट हुंदा हुंदा सी। मैं प्लस 1 ते प्लस 2 प्राइवेट कीती अपनी क्योंकि मेरे को इन्ने ज़्यादा मजबूती नहीं सी कि मैं स्कूल या कॉलेज पढ़ सकां।
1: ते गल करिए उन्हां दी पढ़ाई दी, तां उन्हां ने प्लस 1 अते प्लस 2 दी पढ़ाई प्राइवेट कीती। ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੀ ਜੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਡਰਾਮਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ

0: अज फिर कोई पैड़ा सुपना?
1: परछावे मेरा पीछा क्यों नहीं छड़दे पीकू? मैं सोचा सी कि मैं तेरे वांग साध बन जांगा ते मन नू कुछ टिका आएगा। मैं तो इत्थे सब कुछ करता जो इत्थों दे साध करदे ने, हुण तां उहनां नाल गलबात वी उहनां दी भाषा च करता, पर पता नहीं क्यों मेरा मन अज तक भी साध नहीं हो सकिया। मेरे मन की भटकण मैनू कहिंदी है कि तू इत्थे क्यों बैठा बुला रहा?

0: आकाशवाणी दे विशेष प्रसारण संबंधी सूचना। आकाशवाणी दा समाचार सेवा प्रभाग भारत सरकार दे 12 साल पूरे होण ते मिति 1 जून 2026 तो मिति 21 जून 2026 तक प्रसारित करेगा विशेष प्रोग्राम। ए प्रोग्राम तुसी शाम 7:10 तो रात 8:15 तक सुन सकोगे। इस विशेष प्रसारण दे चलदिया शाम 7:30 आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किते जान वाला पंजाबी विच खबरां दा बुलेटिन हुण तुसी सुनिया करोगे शाम 7:00 तो लेके 7:10 तक। सूचना समाप्त हुई।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
3: सुनो सुनो सुनो पिंड वालियो, केवाईसी अपडेट सुने नू नजरअंदाज ना करो, अपना केवाईसी फौरन अपडेट करवाओ। जेकर पछाण जब पते विच कोई बदलाव नहीं है ता अपने बैंक जा एटीएम जा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी कोल जाओ, जा बैंक नाल रजिस्टर्ड ईमेल जा मोबाइल नंबर राही जा मोबाइल बैंकिंग ऐप राही जा पत्र राही उसकी स्वै घोषणा करो। ते जेकर कोई बदलाव है ता पछाण अते पते दा नवीनतम सबूत दिखाओ, खाता कार्यशील रखो अते बैंकिंग सेवावां दा लाभ उठाओ। अपना केवाईसी अपडेट करवाउन लई अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप जा बैंक शाखा ते जाओ।
4: आरबीआई कहिंदा है
5: जानकार बनो सुचेत रहो।
6: प्रोग्रामा संबंधी सूचना। मिति 31 मई दिन एतवार सवेरे 11:00 मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियां नाल सांझे करनगे अपने मन की बात ते उस तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश किता जावेगा ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8:00 प्रसारित किता जावेगा।
1: सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।

आकाशवाणी दे विशेष प्रसारण संबंधी सूचना। आकाशवाणी दा समाचार सेवा प्रभाग भारत सरकार दे 12 साल पूरे होण ते मिति 1 जून 2026 तो मिति 21 जून 2026 तक प्रसारित करेगा विशेष प्रोग्राम। ए प्रोग्राम तुसी शाम 7:10 तो रात 8:15 तक सुन सकोगे। इस विशेष प्रसारण दे चलदिया शाम 7:30 आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किते जान वाला पंजाबी विच खबरां दा बुलेटिन हुण तुसी सुनिया करोगे शाम 7:00 तो लेके 7:10 तक। सूचना समाप्त हुई। प्रोग्राम चल रहे रंगे गजल। अगली गजल गुलाम अली दी आवाज दे विच। थक कर जब भी लौटता हूँ दुनिया की भीड़ से, घर की दहलीज सुकून का पैगाम देती है। थक कर जब भी लौटता हूँ दुनिया की भीड़ से, घर की दहलीज सुकून को पैगाम देती है। पेशा प्रोग्राम दी अगली गजल आवाज गुलाम अली दी।

0: केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
1: प्रोग्राम संबंधी सूचना, मिति 31 मई दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियां नाल सांझे करनगे अपने मन की बात, ते उस तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश कीता जावेगा, ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8 बजे प्रसारित कीता जावेगा।

प्रोग्राम रंगे गजल पेशा प्रोग्राम दी अगली गजल जिसनू आवाज दिती है जगजीत सिंह ने।

0: का फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: प्रोग्रामा संबंधी सूचना मिति 31 मई दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियां नाल सांझे करनगे अपने मन की बात ते उस तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश कीता जावेगा ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8 बजे प्रसारित कीता जावेगा।

0: प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा जी, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना पुलना, मिति 31 मई दिन एतवार नू शाम 5 बजे प्रोग्राम बाता पुराने पंजाब दिया।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
3: श्रोतियों, हर साल 31 मई नूं मनाया जांदा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस मौके नौजवानों नूं इस अलामत तों आगाह करन दे लई आकाशवाणी बठिंडा वल्लों मिति 31 मई शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युववाणी दे तहत प्रसारित कीता जाएगा एक विशेष प्रोग्राम, जिस दे विच तंबाकू दी गिरफ्त तों आजाद होए नौजवानों दे नाल मुलाकातां, एम्स बठिंडा दे कैंसर अते मनोरोग विभागां दे डाक्टरां दे नाल मुलाकात अते सरकारी हस्पताल बठिंडा दे नशा छुड़ाऊ केंद्र दे नोडल अफसर इंचार्ज डॉक्टर अरुण बंसल दे नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगे। सुनना ना भुलना 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस ते एह विशेष प्रसारण आकाशवाणी FM बठिंडा तो शाम 6:30 बजे।

प्रोग्राम चल रहा है रंगी गजल। बनी हुई है मैं तुम्हारी अपनी दोस्त होस्ट विजयलक्ष्मी। प्रोग्राम दी अगली गजल बहुत ही बेहतरीन। कहिंदे जिंदगी दा सफर जड़ा हुंदा हमेशा ही चलते हुए मंजिलां नूं पा ही जांदा है। आहिस्ता आहिस्ता सफर भी कट ही जांदा है। मंजिले मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। राहों में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, राहों में मुश्किलें जो आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर साथ ना दे तो मंजिलें और निखरती हैं। जिंदगी एक सफर है और हर सफर अपने साथ कुछ यादें कुछ किस्से और कुछ तराने छोड़ जाता है। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार

0: को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये 4 विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउनलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा

संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आनंद बख्शी लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से यह है कार्यक्रम आपके लिए।

0: ज्वेल थी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब

0: विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं, उन्होंने सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी, उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

0: ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपनी ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।
1: कहां से लाई हो जान।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की, जहां उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: सोहन लाल जी।
1: बोलो लाल जी।
0: अरे यार कन्हैया बैठा चुप है भैया।
1: मेरा भैया?
0: हाँ हाँ तेरा भैया, हाँ हाँ मेरा भैया।
1: भैया भैया बोलो भैया।
2: बोलूं क्या मैं? अरे बोल कन्हैया।

पूरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला।
1: हुण तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण आकाशवाणी एफएम बठिंडा एफ एम बैंड 1.1 मेगाहर्ट्स की स्टूडियो की कड़ी के मुताबिक रात के 11:01 हो रहा है। हुण साड़ी अज की प्रसारण सभा समाप्त होंदी है। कल सवेरे 5:55 ते एक बार फिर तुहाड़ी सेवा दे विच हाजिर होवांगे। उदों तक लई इजाजत दिओ। जय